श्री मलिक ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब संत मुक्ताबाई रचित एक पारंपरिक गौरण सुनते हैं।

अभी आपने संत मुक्ताबाई ने रची एक पारंपरिक गवर्ण सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना, जिसे गाया है राजा काटे ने।

अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर रचना सुनी, जिसके रचयिता थे एन.के. बेहरे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मालती पांडे के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना। संगीतकार हैं दादा चांदेकर।

संत जनाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत निवृत्तिनाथ की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत निवृत्तिनाथ की भक्ति रचना सुनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। रचनाकार हैं बाभव बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं संघमित्रा कर. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल परफॉर्मेंस. लिसन टू अ ख्याल रिसाइटल इन राग आहिर भैरव. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग Shongomitra Kaur. The accompanying artists are Pandit Shujit Shaha on the tabla and Ratan Natto on the harmonium.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी संगमित्रा कर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं राग मिया की तोड़ी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं राहुल चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल परफॉर्मेंस इन राग आहिर भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज संगमित्र कौर। Accompanying the artist was Pandit Sujit Saha on the tabla and Rotan Natto on the harmonium. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani sitar recital by our next artist Rahul Chattopadhyay. Rag Mia Ki Todi. The accompanying artist is Torun Roy on the tabla. Sitar recital in Rag Mia Ki Todi.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मियां की तोड़ी में सितार वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे राहुल चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a Hindustani sitar recital in Raag Miyan Ki Todi. Our artist was Rahul Chattopadhyay. Accompanying the artist was Torun Roy on the tabla.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत है ठुमरी बोल है साजन मेरा छोड़ गया तबले पर संगत किया है महादेव इंदोरकर ने सारंगी पर जेपी खान और हारमोनियम पर बाबूराव नेजकर
2: Listen to Hindustani light classical vocal by Vidushi Shobha Gurtu. First, we will listen to Thumri. Bol, Sajan Mera Chhod Gaya. Accompanying her on tabla is Mahadev Indorkar. On sarangi, J.P. Khan. And on harmonium, Baburao Neskar.

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुर्टू की गाई ठुमरी। अब सुनते हैं माज खमाज ठुमरी, बोल हैं अब कैसे धरूं धीर।
1: Now we will listen to मांझ खमाज ठुमरी, बोल अब कैसे धरूं धीर।

0: अब सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का गाया दादरा। बोल है बिंदिया ले गई हमार मछलिया।
1: दिस इज रागम 24/7।

0: ये था दादरा। विदुषी शोभा गुर्टू की गाई भैरवी ठोबरी सुनिए, बोल हैं बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।
1: That was दादरा। Now listen to भैरवी ठुमरी by विदुषी शोभा गुर्टू। बोल बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।

ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Agam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी सुमित्रा गुहा का गाया राग कलावती. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं श्याम नाही घर आए और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध. बोल हैं कान्हा रे गिरधारी. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति भट्टाचार्य जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present a vocal recital by Vidushi Sumitra Guha. She is accompanied on the tabla by Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Arudhati Bhattarji. She first presents Rag Kalavati, in which she sings the Vilambit Khayal set to Ektal. Lyrics of this khayal are Shyam Nahar Aaye. This will be followed by the Drut Khayal set to Ektal. The lyrics of Drut Khayal are Kanha Re Girdhari.

0: गुहा का गाया राग कलावती सुन रही थी। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अनुधति भट्टाचार्य जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्य लय और द्रुत ख्याल अध्याताल और तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं चलो कोकिला मधुमास आया और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बीत जात बरखा ऋतु। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति आचार्य जी ने।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कलावती प्रेजेंटेड बाय विदुषी सुमित्रा गुहा। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, विदुषी सुमित्रा गुहा नाउ प्रेजेंट्स राग देश, इन विच शी फर्स्ट प्रेजेंट्स मध्यलय एंड द्रुत ख्याल सेट टू अद्धाताल एंड तीन ताल। द लिरिक्स आर चलो किला मधुमास आया। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल। The lyrics of this Drut Khayal are Beet Jat Barha Ritu.

0: अभी आप विदुषी सुमित्रा गुहा गाया राग देश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर अरुधति भट्टाचार्य जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You had been listening to a vocal recital presented by Vidushi Sumitra Guha. She was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Srimati Arudhati Bhattacharjee. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kakani. Raag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwara Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिणी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरुरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिणी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरुरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बिहाग में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं सुनंदो मुखोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. सरोद पर राग बिहाग, कलाकार सुनंदो मुखोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन राग बिहाग. Our artist this evening, Sunanda Mukhopadhyay, accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a sarod recital in Rag Behag by Sunanda Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिहाग में सरोदवादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुनंद मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a Sarod recital in Rag Behag by Sunand Mukhopadhyay, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्यामलाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग आभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई रिसाइटल बाय श्यामलाल एंड पार्टी। रिसाइटल इज इन राग आभोगी। विलंबित गत इज इन एक ताल एंड द्रुत गत इज इन तीन ताल।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी रिसाइटेड बाय श्यामलाल एंड पार्टी। वी नाउ प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री। रागम 24/7 DTH anytime Indian music. This program was the contribution of All India Radio Lucknow.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा. बोल हैं गोरी बन के नैनों से चला जादुआ. संगत कलाकार हैं तबले पर.

अगली प्रस्तुति है कजरी, बोल धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नहीं। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द कंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present Hawaiian guitar recital of Varun Kumar Pal. First listen to rag Nad Bhairav. The alap is followed by Vilambit Gat and Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied by Nawab Ali on tabla.

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए बैरागी में आलाप, मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू हवाइन गिटार रिसाइटल इन राग नट भैरव बाय वरुण कुमार पाल। नाउ लिसन टू राग बैरागी। द आलाप इज फॉलोड बाय मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप वरुण कुमार पाल का हवाइन गिटार पर बजाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी स्मृति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू लिसनिंग टू हवाइन गिटार रिसाइटल इन राग बैरागी बाय वरुण कुमार पाल। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Sari sama gaba mani ba san ni san

上门上房门，你搬上你忙你上你搬，谁上你房门，房门谁上你房门呐？

Mama,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतिभानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रतिभा भानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वैभवी शेटे के स्वर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना सुनी वैभवी शेटे के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत चोखा मेळा की, जिसे गाया है उदय काळे ने।

उदय काले ने गई संत चोखा मेला की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत जनाबाई की भक्ति रचना सुमन मते के स्वर में।